0: 我们那么点呢。All time beats with
1: Jami.
2: जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं.
0: साथी दिन वन एक दांग हाथ लगाने का. All time beats with Jami.